0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: सतकाल, मैं हूं जी शेर गिल, से तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: Skill Visa 186-189-190-482-491. Skill Assessment, Partner Visa, Parent Visa, cha Student Visa to PR tak. Har immigration process le expert guidance. Aaj hi parose naal sampark karo. IME Advisor. Call 02-9063-1618. Hun Parameta Sydney ati New Delhi vich vi. IME Advisor.
1: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: हाँ वे सिडनी वालियों, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: ਡਕੈਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
3: ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ।
2: ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਕਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ।
3: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश।

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: स्थिति आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1600 ਚੌਕ ਕਰਕੇ।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। हांजी
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Hi, this is Abbas Khan and you're listening to Hanji Radio 167 4 AM।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस.
3: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई. एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने.
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा.
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: रेडियो हांजी 1674 AM।

विक्टोरिया दी प्रीमियर सांप का प्रीमियर जैसिंटा एलन ने कहा कि अगली बार नहीं लड़नगे चोणा, पर जीएसटी नू लेके आस्ट्रेलिया दे विच इक बड़ा खुलासा। इको ही सूबे नू क्यों दित्तियां गईयां ने सारियां सहूलतां, विक्टोरिया ते एनएसडब्ल्यू सूबे हुए नाराज। और डार्विन टेस्ट दे विच आस्ट्रेलिया दी हालत कमजोर, भारत दे विच इक होर सुरंग हादसा, मजदूरां दी मौत। पर नालसार यूनिवर्सिटी दे विच विरोध प्रदर्शनों के दरमियान भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुण अजिहा की किया, हर बार उन्हां दी टिप्पणी बन जाती है विवाद का विषय। भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दीआं खबरां लैके आए हैं प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच, अज 14 अगस्त 2026 शुक्रवार की शाम। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ के नाल करते हैं शुरुआत।

0: कि मेरे हक का नहीं था, फिर से झूठ कह दूंगा कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

हो चुकी है, बट आवारापन सिनेमैटिक रिलीज आज दे दिन। अच्छा आवारापन दे करके श्रद्धा कपूर दी फिल्म जिहड़ी सीगी वो जिहदे च ओह डांसर बने हुए ने काठियावाड़ी वर्गे डांसर नहीं हैगी ओह श्रद्धा कपूर, ईथा, ईथा दी जिहड़ी रिलीज और डिले कर दित्ती गई। पहलां इह कठियां रिलीज होणियां सीगियां, सो हुण अनुपम खेर दी खोसला का घोसला पार्ट टू ते ईथा 28 तरीक नूं शायद रिलीज़ हो जाण। ते पहला ये 14 अगस्त दे दिन इधर बटवारा भी रिलीज़ होनी सीगी, सो इस करके आवारापन टू दे करके इन्हां दे करके सारियां बड़ियां फिल्मां दे करके ईथा नूं अगे कर दिता गया। एक आखिरी सवाल, संजय दत्त वाली फिल्म हैगी है, संजय दत्त दी ये फिल्म शायद सब तो कंट्रोवर्शियल फिल्मों के विचों एक होवे, देखियो ट्रेलर इहदा तुसीं। ये कितने रिलीज़ होनी है, लायंस गेट प्ले करके कोई अलग तो ही प्लेटफॉर्म है, आई डोंट नो हूँ वो कि प्लेटफॉर्म है, बट कोर्ट रूम ड्रामा है यह। तो ये तो इलावा नैटफ्लिक्स के उत्ते एक होर डब मूवी भी है उमथलेथो वो नैटफ्लिक्स के उत्ते रिलीज़ होनी अज के दिन। बाकी आने वाले दिनों के फिल्मा रिलीज़ होनी वह भी तुहानू दस दें, पर नवें नवें गाने भी होंगे ने साडे इस प्रोग्राम च, सिर्फ गल्लां ही नहीं होंदियां हैगियां। आस्था गिल का एक नवा गाना है, देखते हैं जो समा लगता तो बैक टू बैक दो गाने तुहानू होर सुना दें।

0: सवाल ही नहीं उठता। तो जहाँ जाओगे वही मुझे पाओगे।
1: क्या ये खालिद अलजीज़ी है, द इंटरपोल स्टार?
0: तुम सही जगह आई हो। तुम्हें मुझसे प्यार है?
2: बहुत ज्यादा।
0: इश्क से खूबसूरत कुछ नहीं है जी, पर हमारे जैसे लोगों की किस्मत में इश्क नहीं होता।
3: ड्रग्स की शिपमेंट्स का बहुत बड़ा काम होने वाला है।
0: कैसा शिपमेंट?
3: पिंक लेडी।
1: ये देश की सुरक्षा की बात है, सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का।
4: अरे भाई, मेरा भाई, लॉन्ग टाइम।
0: अब इंडियन डॉग के बारे में जानना है।
5: कैरी, मुझे तो लगा तू नर्क पे चील कर रहा होगा।
6: ये पूरा इलाका उसके कंट्रोल में है और तुम उसे पकड़ने आए हो।
7: बेसिकली ये फिल्म जड़ी है सेवन डॉग्स, ओह जिवें बैड बॉयज वर्गा प्रोजेक्ट है उदा का तुसी प्रोजेक्ट कह लो, बट ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इस करके है क्योंकि ये इंडिया के तो सलमान खान तो संजय दत्त हो ही गए, ये इंडिया के, ये मिसर के, ये मतलब अलग अलग सिनेमा के कट्ठे लोग, यूरोप के आर्टिस्ट, हॉलीवुड के आर्टिस्ट कट्ठे लए हुए है। सो दैट्स गोना बी अ क्रेजी क्रेजी प्रोजेक्ट। और लेट्स सी, बिलाल फला ते आदिल अल अरबी इन्होंने यह डायरेक्ट की हैगी है। कोलैबरेशन एक किस्म की, सैवन डॉग्स, टू ऑफ दैम आर सलमान खान ते संजय दत्त, दैट्स व्हाट आई बिलीव। कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर फटाफट तुहानू दस दी, अज दे दिन दियां तां पता लग ही गईयां तुहानू, एंड ऑफ ओक स्ट्रीट ते बटवारा दी गल दसी है ते अवारा पंटू, ये तीन फिल्मां मस्ट वॉच दे विच हो सकदियां ने। उस तो अगले हफ्ते हार्ड डिस्क नाम की एक फिल्म रिलीज़ हो रही हैगी है, हालांकि आई रियली डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मूवी। एक पोलीटिकल बैकड्रॉप के उत्ते तैयार हुई फिल्म मोटे मोटे तौर पर दसी जा रही है, मैं कोई वो नहीं देखा, ट्रेलर नहीं देखा। बच्चों दिखाने के लिए पा पेट्रोल 3 देख सकते हो, बट वैन आई से पा पेट्रोल बच्चों के लिए तो स्पाइडरमैन भी हैगी है, बच्चे थोड़े जे बड़े क्योंकि एक्शन बड़ा चंगा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने इंडिया दे विच तां कमाल ही करता यार, मतलब कहिंदे कि इंडिया च सब तो वध कमाई करन वाली ये फिल्म बन गई है। ओडिसी नूं भी पिछे छड़ गई है, क्रिस्टोफर नॉलन की जिहड़ी ओडिसी है वो जुलाई च रिलीज़ हुई सीगी, उन्हें 200 करोड़ की कमाई की सी इंडिया च, इन्हें 500 करोड़ की कमाई कर ली है इंडिया दे विच, इंडियन रूपीज़ दे विच। वैसे कमाई की जे गल करिए तां मेरे ख्याल दे नाल कमाई वाली भी आपां गल अगले सैगमेंट च कर सकते हैं जे टाइम बचिया था, नहीं बचिया होया है टाइम। सो मैं कैलेंडर तक ही सीमित रहना है। तो पा पेट्रोल अगले हफ्ते जिहड़ी डीनो मूवी हैगी है, डायनो मूवी डायनासोर वाली इंग्लिश मूवी, वो रिलीज़ हो रही है, तो इंसिडियस भी रिलीज़ अगले हफ्ते हो रही है। भारत देश हमारा एक छोटी मूवी है 21 तरीक न्यू म्यूटनी भी एक इंग्लिश रिलीज़ होनी है, पर वो तो बाद यश भाई के जी एफ वाले टॉक्सिक लैके आ रहे हैं अपनिया पांच हीरोइनज़ के नाल जा के, कई जड़े एनीमल वर्गिया फिल्मां पसंद नहीं करते तो टॉक्सिक तो जमा ही दूर रहन, क्योंकि फैमिनिज्म का झंडा इस फिल्म के नहीं चुकया जाना है थोड़े तो बहुत भारी पै जाना। 28 अगस्त को जीवन बीमा योजना अरशद वारसी की फिल्म का ट्रेलर तुम देख लो, पर 4 सितंबर को कालीन भैया आ रहे हैं मिर्जापुर की मूवी, हूँ इस बार थिएटरिकल फिल्म रिलीज़ हो रही हैगी है, OTT ते नहीं आनी हैगी इस बार। कालीन भैया, मुन्ना भैया तो बाकी की सारी टीम जी है मिर्जापुर 4 सितंबर को लैके रिलीज़ हो रही है। 4 सितंबर में ही अपनी पंजाबी फिल्म भी रिलीज़ होनी है बोल भावें ना बोल, तो इंग्लिश दे विच हाउ टू रोप अ बैंक भी रिलीज़ होनी है, पर वो तो बाद 11 सितंबर को हैवान फिल्म रिलीज़ हो रही हैगी है। ये बारे भी बड़ा कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, सैफ अली खान तो अक्षय कुमार फिलहाल मैं इत्थे तक के कहानी लिया के छड़ दिना है, ये तो बाद तुसी हुण ये फिल्म देखनी हुई देखियो, नहीं देखनी हुई ना देखियो, मैनू पर्दा बेपर्दा दे विचो दियो इजाजत।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
1: ਡਕੈਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ
2: ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ
1: ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਕਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
2: Starring Raj Kundra, Payal Rajput, Garvita Sadhwani, ate hor kai saathi kalakar. 7 August to tuhade nedle cinema ghar vich.
3: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
4: और जो हुकम मेरी सरकार
3: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
4: आहो जी आहो
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
6: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
7: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
6: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
7: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
5: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
8: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल
5: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई

0: बड़ी नमीजी बोली है,
1: क्या बात है, महात्मा गांधी ने भी पाई होनी है।
0: आलू आलू आलू नी बापू गांधी ने कीता चरखा चालू नी बापू गांधी अभी पौनी आई बीबी
1: बल्ले क्या बात
0: बोलियां दी खूबसूरती है ना, जेडी मर्जी बना लो।
1: एक गल सही है ना,
0: थैंक यू ना,
2: थैंक यू मेरे दीदी नाल गल कर।
1: ओ गॉड,
2: हेलो
0: हेलो,
2: सत्श्रीकाल जी ते अंकल जी।
0: सत्श्रीकाल, हुण अंकल तुसी हो।
1: हफ्ते वंड लैने, अगले हफ्ते मैं वीरा हो जाऊंगा।
0: जे वीरा कहने के बावजूद भी मेरे को गलती होगी तो फिर अंकल कह लेना।
1: ठीक हो
0: गया, मतलब वेखना चाह रहे हैं इदा भला ठीक होंगे। तैयारी कर लो, गाना गाने की तैयारी कर लो, अपना ब्याह ते गाना बोलना।
2: ठीक है,
0: ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट दस दो की चाहिए तुहानू, किन्ने एम्प का स्पीकर
1: चाहिए,
0: किन्ने साइज की स्टेज चाहिए,
1: सजन दे भी चाहिए कि नहीं,
0: वह तो यह दसनगे ना।
1: चलो डन हो गया
0: है ना, पिछे हेकां लाउण वालियां किन्नियां बीबियां चाहीदियां, उन्हां दी उम्र किन्नी होनी चाहीदी आ, तुसीं डिटेल दे विच बना के लियाउणी लिस्ट।
1: मैं कालियां एनका पा के ना बैक साइड ते सा गिटार लैके अपनी खड़ा हो जाऊंगा, भावें बोली ते जचे ना जचे, पर उहदा फोटो जदे लगना चाहीदे ना कि तकड़ा कॉन्सर्ट टाइप लैवल हुंदा जे।
0: हां
1: है ना, डन हो गया।
2: ढोलकी पापा बजा लेंगे,
0: बस ठीक है,
1: बस गल खत्म हो गई, ढोलकी गिटार
0: होर
1: ते बस हो गई बोली तैयार।
0: हां
2: गुड, हां जी
0: ओके हो गया काम ते फिर।
2: चढ़न फांसी सानूं देख के नहीं घबरा जाना, साडी मौत ने वतन दी वासियां दे दिल्ली वतन दा इश्क जगा जाना, देश वासी और चमकना चंद वांगू किते बदलां हेठ ना आ जाना, करके देश दे नाल त्रो यारो दा कौम दे मत्थे ना ला जाना, मुला सिंह किरपाल नवाब वांगू अमर सिंह ना किसे कहा जाना, जेला होन कॉलेज वतन सेवकां दे दाखल होए डिग्रियां पा जाना, हुंदे फेल बहुत अते पास थोड़े वतन वासियों दिल ना ढा जाना, प्यारे वीर नो चले हां असी जिथे इसे रस्ते ओ तुसी भी आ जाना, इसे रस्ते ओ तुसी भी आ जाना।
1: वेरी गुड, वेरी नाइस,
2: थैंक यू,
0: वेरी नाइस, बहुत सोना याद कर लिया।
1: उमराओ जान जी आके करनगे वो फ्लैग होस्टिंग।
0: अच्छा,
1: ओ यस, रानी मुखर्जी भी आ रही है।
0: ओके
1: गुड, गुड,
2: साढ़े
1: दस शुरू मेरे
0: सवेरे शुरू हो जाना। हाँ, 11
1: सवेरे, मतलब प्रोग्राम तो 10 बजे तो शुरू हो जाता पर होस्टिंग वही है 10:30।
0: चलो थैंक यू,
2: वीर जी तुम मिलन आवांगे
1: फिर मैं। हाँ
0: ठीक है भैणा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न्याणिया दी पिकअप किड्डी वेख
1: देख लो,
0: किड्डी पिकअप मार दे उस वेले। नेक्स्ट साडे नाल ने ताज एंड सिबलिंग। ते सत श्री अकाल एम्बर, तुसी आउने रहो एम्बर गुरबाज।
3: सत श्री अकाल,
0: सत श्री अकाल एम्बर, की हाल है?
1: कृष्णा अंकल वालों थानू भी सत श्री अकाल।
0: की कर दे हो? आ साडा ठीक है पुत्र, तुहाडा की हाल है?
3: वधिया।
0: ओके, की कर दे सी?
3: आ ब्रेकफास्ट खांदे सी।
0: एगी दे नाल की खांदे सी?
3: एग जूस।
0: ओह
1: ओए,
0: वाह वाह वाह, गुड। तुही फिक्स पक्का पक्का रोज ब्रेकफास्ट हुंदा तुहाडा?
3: हां जी,
0: एवरीडे
1: सिमिलर ब्रेकफास्ट, वेरी गुड।
3: सम टाइम एग एंड बेकन।
0: sometime again.
4: Sometime.
0: Okay.
1: Good.
3: Sunday.
0: Hanji?
1: Saturday.
3: Pancake.
1: One more.
3: हवे हवे का उत्साह पप का

0: जिंदाबाद, ट्रक जिंदाबाद,
1: ट्रक जिंदाबाद,
2: ट्रक जिंदाबाद,
1: सिडनी जिंदाबाद,
2: ट्रक उड़ लिया, ट्रक उड़ लिया प्या।
0: अच्छा उड़ गया वा,
2: वो फ्लाई हो लिया
0: ना पुत, जदों तुसीं ना सुकणे पाउंदे हो ना धो के उदों चिटक नहीं ला दिया करो उत्ते, फिर नहीं उड़ूगा।
2: ट्रक
0: जिंदाबाद, बल्ले
1: बल्ले बल्ले, वेरी गुड,
0: थैंक यू थैंक यू। नाइशा दा अज जन्मदिन यश जी दा मैसेज आया, कहिंदे भी अज पार्टी आ भी शामी होर कोई कम ना रखियो। अच्छा ओके ठीक है, किन्नवा बर्थडे आ फिर उस हिसाब के नाल आपां गल बात करिए।

विक्टोरिया दी प्रीमियर साबका प्रीमियर जैसिंटा एलन ने कहा कि अगली बार नहीं लड़नगे चोणा, पर जीएसटी नू लेके आस्ट्रेलिया दे विच एक बड़ा खुलासा। इको ही सूबे नू क्यों दित्तियां गईयां ने सारियां सहूलतां, विक्टोरिया ते एनएसडब्ल्यू सूबे हुए नाराज। और डार्विन टेस्ट दे विच आस्ट्रेलिया दी हालत कमजोर। भारत दे विच एक होर सुरंग हादसा, मजदूरां दी मौत। पर नालसार यूनिवर्सिटी दे विच विरोध प्रदर्शनों के दरमियान भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुण अजिहा की किया, हर बार उन्हां दी टिप्पणी बन जाती है विवाद का विषय। भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दीयां खबरां लेके आए हैं प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच, अज 14 अगस्त 2026 शुक्रवार की शाम। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ के नाल करते हैं शुरुआत।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माधवन बोल रहा हूँ, यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: चल दोस्तों, मैं हां थोड़ा अपना प्रीतरपाल, ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।
1: आजा प्यार की हो डील।
2: डील बोले तो
3: हार्ट हार्ट।
4: हाँ यार सौदा सौदा।
3: ओहो
1: दोनों डील कर सील।
2: टाइट, टाइट, वेरी टाइट।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।
3: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: हाँ वे सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: It's a unisex song.

0: सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM। रेडियो
1: हांजी, दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थी नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वादा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की। अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ।
1: सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा। एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सीन्स आफ्टर सीन्स आफ्टर सीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द टाइम पुट टुगेदर इन द होल डे। एंड हर सीन में व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल, बिकॉज हमें समझ में आ गया कि आई एम द एक्टर एंड दिस इज माई रोल। लेकिन एम आई कॉन्शियस वाइल प्लेइंग द रोल?
0: आई थिंक नेवर। और यहां से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है। कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो। और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई तो मेरे और कितने सबके साथ रिश्ते जो है वो चेंज, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही।
1: So one is all these roles that I play, लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं हस्बैंड था, मैं फादर हूँ, मैं कल को ग्रैंड फादर भी बनूंगा, ऑल दीज रोल्स दैट आई प्ले, इसमें भी आई प्ले रोल्स। यू सी, रोल मीन्स कि हर सीन जो आए उस सीन में मैंने कैसे इनैक्ट किया, दैट इज माई रोल इन दैट पर्टिकुलर सीन। अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूं। आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से। क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेज आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है, इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूँ वो किस पर बेस्ड है,
0: क्योंकि जैसे सिचुएशन आती गई मैं उस पर।
1: सो इट वॉज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस।
0: ओके, दे आर इंस्टिगेटिंग मी टू बिहेव लाइक दिस और एक्ट लाइक दिस,
1: राइट? तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है, जिसके लिए हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूँ। नाउ इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
0: दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ ग्रैंडफादर, एज अ फादर, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी
1: एंड दिस इज फिक्स्ड एंड आई एम प्लेइंग इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। आई एम इनएक्टिंग दिस पर्टिकुलर सीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूं और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल मैं उसको प्ले कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माई थॉट, सिचुएशन आई मैंने थॉट क्रिएट किया, तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो
0: मेरी अपनी चॉइस है,
1: मेरी चॉइस है। सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल
0: द वे आई वांट
1: टू डू इट।
0: बट वी ऑलवेज से द डायरेक्टर इज वन,
1: हु इज द डायरेक्टर,
0: ही इज डायरेक्टिंग, यू नो।
1: नाउ अगेन वी अंडरस्टूड व्हाट्स गॉड्स रोल। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूँ, या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा है?
0: नहीं, दैट इज नॉट देयर,
1: दैट इज नॉट देयर। सो आई कैन नॉट से ही इज क्रिएटिंग द रोल फॉर मी, He can give me the wisdom and the power, लेकिन who creates my role?
0: I create
1: my role. तो अगर मैं एक दिन भी इस awareness के साथ चलूं कि scene after scene, I not only play the role, but I create the role.
0: I create the next situation, I create the, and I start acting it that way. I can act this way.
1: हाँ, see ना?
0: हाँ.
1: Fixed नहीं है. हर situation में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक scene है. You can act this way. There will be at least five different ways जिसमें आप act कर सकते हैं. इसका मतलब as an actor, आपका role fixed नहीं है. आपके पास choice है कि आप किस तरह से उसको enact करना चाहते हैं. आपकी script already
0: लिखी हुई नहीं है.
1: This is a very big thing. ये बहुत बड़ी realization हो जाती है. और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे.
0: ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल. ओनली द सिचुएशन कम्स. अगर आप थिएटर में भी है, अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास प्री जो रिटन डायलॉग्स नहीं है, इट्स ओनली द सिचुएशन, देन हाउ आई हैंडल इट, इट्स माय चॉइस.
1: तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा ये सर.
0: इट्स अमेजिंग.
1: फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइन्स पूरी याद की हुई है, आपको सिर्फ बोलना है. नहीं, उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं. लेकिन एक है सिचुएशन आई, आपने परिस्थिति को परसीव किया, अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है, और उसको प्ले किया. अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले differently.
0: But I can then take the play into a different direction.
1: Absolutely. And that is why we said you create your destiny. When we're saying aap apna bhagya, apni destiny khud create karte hain, that means you can take the play
0: into a different direction, into a different, completely.
1: Completely different. Based on har scene mein aap kya creativity use karenge. Agar koi apni creativity ko nahi use kar raha, so that person is working in a very automated mode. वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया. वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया. उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया. उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी? इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस. माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज.
0: इनफैक्ट इससे पता क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो जो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
1: इन द प्रेजेंट.
0: यस.
1: इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट, प्रेजेंट में कैसे जीतें, पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें. लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो, जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस, अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, घर से ऑफिस रोज जाते हैं, यू नो, आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब आप बिल्कुल कुछ कुछ कुछ और सोचते सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए, राइट? लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा, अब यहां जाना है या यहां जाना है, यहां जाना है, फिर यहां टर्न करना. आप रास्ते में चीजों को देखेंगे. लेकिन जहां आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं, doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा एक घंटा जर्नी की, लेकिन you were not present. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में जर्नी कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप सीन्स में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन I am not there because I'm not needed there, because मैं अपना response choose ही नहीं कर रही. Fixed किए हुए हैं responses. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है, तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी? तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, कुछ और सोचते सोचते. तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर, एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया सीन, नया रोल, and my choice how to play. Par time hai past aur future ke bare mein sochne.
0: No, that's what I'm saying. Then you know, like awareness mein phir hum active rahenge, hum actually you know, all hamare senses jo hai wo taiyar rahenge ki how can we innovatively do it.
1: Absolutely. To phir jo baat ho rahi hai bar bar, how to be in the present moment. You know, the question is ki har ek ko ye pata hai ki past aur future is waste of time and energy, lekin how to do it. क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो, काम हम करते हैं. कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस अवेयरनेस, डिसीशन एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ और वहां की बातें सोचने के लिए, क्योंकि मन फुल कॉन्सेंट्रेशन से उस मोमेंट के ऊपर है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट आवर लाइफ लाइक दैट, कि एवरी मिनट अवेयरनेस, हाउ टू चूज द रोल, जीवन कैसी हो जाएगी. एंड मेन चीज उसमें जो आएगी, इट विल बिकम फन,
0: इट विल बी एक्साइटिंग.
1: इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ
0: फन. जो एक वो थकान से हम भर चुके होते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू डू, देयर इज नथिंग.
1: अगर आपको मोनोटोनस काम करना हो तो उसके एंड ऑफ द डे कैसे फील होगा?
0: वेरी टायर्ड.
1: लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना हो, यू एंजॉय, आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन, एंड येट यूल से मोर
0: आपकी ऊर्जा बची रहती है.
1: क्योंकि क्रिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द सोल. हर आत्मा का जो हमने देखा था पर्पज ऑफ लाइफ है, इज टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस. लेकिन वो कब होगा? व्हेन आई एम क्रिएटिव, कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है. तो अपने रोल्स को देखें. आज क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया. हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल. टुमोरो पूरा दिन बिताएं, आई हैव टू क्रिएट द रोल, नॉट प्ले द रोल. प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है, आई हैव टू प्ले. अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीजें बहुत लिमिट हो जाती हैं, एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी. मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, I am going to respond only in that very fixed, rigid way. And क्योंकि flexibility नहीं है, creativity नहीं है, मेरी अंदर की जो अनुभूति है, जो experience है, it's going to be very, because stagnant हो जाएंगे. हम वही चीज, you know, same चीज रोज play कर रहे हैं. तो आप life को जो enjoy करना है, इसीलिए आज किसी से बोलो कैसा है, चल रहे हैं, हो रहा है, enjoyment वाली feeling, excitement वाली feeling. नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है. सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापस आना. मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर. फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए. यू नो दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर कि कुछ चेंज चाहिए. चलो हॉलीडे पे जाए.
0: हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं जनरली. अगर हम देखें
1: तो चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता. सो बी लुकिंग फॉर अ चेंज. लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे, यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे, बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग. के हर रोज कुछ नया करना है. हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं. सी, हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं? कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो. अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती. आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे? फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना. आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं. डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज and the rest 11.5 months the same boring way? No. Why not make every day exciting? And वो तब होगा कि situation नई हो वो नहीं, उसी situation में मैं कोई नया response create करूँ.
0: मैं नहीं हो जाऊँ.
1: हाँ, creativity here, not necessarily creativity in event, creativity in situation, creativity in responses. Is that possible? A creativity in a response? कि वही सिचुएशन, वही बॉस, वही पेरेंट, वही हस्बैंड, बट आई विल लुक एट अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग
0: एंड आई सडनली बिकम वेरी नाइस.
1: व्हाटएवर यू कैन
0: अदरवाइज नाइस से अगर इफ आई सडनली बिकम वेरी बैड,
1: creativity, but which will give you a feeling of happiness. Satisfaction, happiness, contentment. अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे roles play करते हैं, लेकिन majorly हमने दो roles में अपने आप को fix किया हुआ है. One is at work, one is at home. ये दो roles हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को tight पकड़ लेते हैं, लेकिन हम उसमें creativity नहीं ढूंढते और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं. दिस इज माय रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है. और जहां उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो मजा खत्म हो जाता है. दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर. जैसे जो आपने कहा पोजीशन, यू नो, आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है. तो पोजीशन को ही रोल समझ लिया. अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है, जो भी, इफ ही सेज I am the manager. That's it. Then वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे,
0: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में.
1: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉयज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूँ. तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी पोजिशन में,
0: I have to create that image, you know. I have to continue to maintain that image of being a boss.
1: तो मैंने अपनी पोजिशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज माई रोल, आई हैव टू बी द बॉस. सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूँ. आई कैन नॉट सडनली बिकम वेरी फ्रेंडली विद हिम और समथिंग, बिकॉज हु एम आई? आई एम द बॉस. नाउ व्हाट इफ टुमारो द बॉस गोज टू द ऑफिस विद दिस अवेयरनेस कि यस, ये मेरी पोजीशन है, लेकिन ये मेरा रोल नहीं है. रोल कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. मैं कभी बॉस का रोल प्ले करूं, लेकिन पोजीशन बॉस की है. कभी मैं एक मोटिवेटर का रोल प्ले करूं, कभी मैं काउंसलर का रोल प्ले करूं. कोई दर्द में है, कोई कंफ्यूजन में है, कोई दो लोगों की आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कभी मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दूं दोनों के बीच में, कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूँ ऑफिस के अंदर. इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी. लेकिन अगर मैंने सोचा
0: ऑन द अदर हैंड आई हैव टू बी वेरी वेरी यू नो लाइक, क्योंकि मैं बहुत फियरफुल होता हूँ, मुझे डर होता है कि एक बार मैंने गिव इन किया तो वो दिल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, यू नो. मैं उनके साथ उस लेवल पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो यू नो,
1: तो दैट इज द फियर. बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट. जस्ट ट्राई एंड इमेजिन कि अगर एक बॉस सिर्फ एक पोजिशन को नहीं स्टिक करके इस तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करे तो वर्क एनवायरमेंट कैसा हो जाए.
0: वेरी स्मूथ एक्चुअली,
1: वेरी लाइट, वेरी लाइट, एंड जो आपस की सबकी बॉन्डिंग होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. सेम विद अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ सिर्फ नहीं, मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ. अगेन अ पेरेंट कैन बी अ काउंसलर. हमें स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत है? हमें स्कूल में, हाउ कैन वी नीड अ काउंसलर इन स्कूल? एक पेरेंट एक काउंसलर हो सकता है, एक पेरेंट एक फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट एक मोटिवेटर हो सकता है. लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट है देन बहुत रिजिडिटी आ जाएगी.
0: इनफैक्ट पेरेंट एक टीचर हो सकता है.
1: टीचर हो सकता है
0: अलॉट, यू नो, कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है इसीलिए मुझे एक ट्यूटर चाहिए, कि मुझसे तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो. मतलब इट्स अमेजिंग.
1: एंड टीचर नॉट नेसेसरी ओनली इन सब्जेक्ट्स, बट टीचर इन सो मेनी थिंग्स. आजकल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे यू नो इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. दे विल से दैट इज द रोल ऑफ द टीचर, दैट्स द रोल ऑफ द स्कूल. व्हाई इज दैट नॉट माय रोल? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बाकी सारा काम वहां होना चाहिए. तो कल अपनी पोजिशन से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें. पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूं और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है. तो हम उससे हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं. इफ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो हंसेंगे भी नहीं खुल के, दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली क्योंकि दे वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजिशन और यही बना के रखना.
0: अच्छा, ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है. समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अंडू करने की कितनी जरूरत है?
1: एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ्स, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजिशन ओरिएंटेड. आपको ये बनना है, आपको ये बनना है. क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा रही नहीं है. और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं. आर्ट ऑफ थिंकिंग वो नहीं था, तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगा,
0: हो सकता
1: नहीं होगा। वो एक सेट पैटर्न था कि आप मदर हैं तो ऐसे मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे, बट नो, इट्स द सेम थिंग, आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज। एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे, हम उसको एंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी एंजॉय करेंगे। क्योंकि आज आप देखो, एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा? अगर एक बच्चे की कोई भी इश्यू है, वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है। वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
0: और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो वॉट समवेयर, पेरेंट घर जब आ जाते हैं तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतने फोन पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है। यू नो यू कैन एक्चुअली, बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका। आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता।
1: नाउ दिस इज क्रिएटिविटी, तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है। नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है, या जो हम यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरी। उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील। लेकिन वो तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन, बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग द रोल, एंड आई एम नॉट प्लेइंग इट बट आई एम क्रिएटिंग द रोल। हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है, How do I want to create my role in this scene? तो आपको कैसे भी scene मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी scene मिले, तो you still have a choice. It's again going back to that fundamental line, I have a choice. हर situation में I will choose how to play the role. So first thing that we have to try, position consciousness, नहीं actor consciousness, कि मैं actor हूँ, I'm playing the role. दूसरी रीजन जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते, इज बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं
0: और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं, अपने मेरा कर्तव्य है।
1: लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो,
0: यही मैं हूँ,
1: यही मैं हूँ। तो यही मैं हूँ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती, क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे, क्योंकि ये ही मैं हूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता। आई एम अ पेरेंट, इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट।
0: एक्चुअली डजंट कम, यस, यू नो, आई एम, आपको वो छोड़ देता है थॉट कि आई एम अ सोल, यू नो,
1: व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल, तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट, एंड डिटैच्ड होकर जो भी रोल प्ले करेंगे वो रोल पहले से भी
0: अच्छा
1: ज्यादा होगा। जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है। देखो, व्हेन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द रोल, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जितने फियर्स है मेरे मन में, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आई कैन बी अग्रेसिव, आई कैन बी डिफेंसिव। इफ लेट्स से माई आइडेंटिटी इज मैं बॉस हूं, अब आप मेरे से जरा हंस के बात करो थोड़ा सा, तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है वो कहीं, यू नो, कहीं ये मुझे, जैसे आपने कहा, फॉर ग्रांटेड ना ले लें, तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज, प्लीज रिमेम्बर, यस, प्लीज रिमेम्बर हु एम आई, आई एम द बॉस एंड यू बेटर टॉक टू मी जस्ट लाइक अ बॉस। सेम विद द पेरेंट एंड अ चाइल्ड, पेरेंट इमीडिएटली वो सिग्नल कन्वे करेगा बच्चे को, यू प्लीज रिमेम्बर आई एम द पेरेंट। दैट डजंट मीन कि हम रूडनेस आने दें या यू नो मिसबिहेवियर आने दें, लेकिन कोई हल्कापन, एक यू नो लाइटनेस रिलेशनशिप के अंदर, दैट्स अ पार्ट ऑफ द, यू एंजॉय दैट रिलेशनशिप। लेकिन जहां हर रिलेशनशिप को उतना टाइटनेस से पकड़ा कि ये हाउ कुड ही टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ कुड ही बिहेव विद मी लाइक दिस, बिकॉज हु एम आई, आई एम दिस, तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या यू नो वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है, जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी।
0: इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में, फन है, वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो बींग
1: विद दोस पीपल, यस, एब्सोल्युटली,
0: आप उनसे कन्नी नहीं काट रहे होते बिल्कुल।
1: तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माई क्रिएटिविटी, इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन।
0: और जहां जहां थोड़ी मुश्किल भी है वहां पर, मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ.
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है, प्लेइंग द रोल, उस पे नहीं जाओ. मेक इट क्रिएटिव, क्रिएट अ ब्यूटिफुल न्यू थॉट उस आत्मा के प्रति. जस्ट गो एंड इनैक्ट इट द वे यू नेवर थॉट यू कुड हैव डन इट. अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात करे तो मैं ठीक से क्यों बात करूं. फिक्स्ड वे ऑफ एक्टिंग द रोल. कल मैं सोचा कम ऑन, फॉरगेट ऑल दिस,
0: कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
1: लेट मी गो एंड प्ले इट इन अ वे दैट इवन आई विल सरप्राइज माई सेल्फ. मैं आपको क्या सरप्राइज करूं, मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाऊं कि वो मैंने कैसे कर लिया ये. दैट इज क्रिएटिविटी.
0: एंड कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
1: ओनली माई परफॉर्मेंस. वैसे भी आपके परफॉर्मेंस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकती हूँ या जजमेंटल हो सकती हूँ. बट इफ आई जस्ट फोकस ऑन माइन, you see how much fun we are going to have in the whole day.
0: Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun.
1: Yeah. Spirituality is a lot of fun.
0: Yes. That's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, aaj ki is puri baatcheet ke liye. Om Shanti.
1: Om Shanti.
0: Ab apne roles पर काम करना शुरू करें. आई थिंक इट विल बी रियल फन. और जो हमारे अंदर का एक्टर छुपा है अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने एंड में आई थिंक यू गिवन द पंच लाइन कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित कर दें, एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें, तो वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी, जितनी हमारी अपनी होगी, उतना हम उसे एंजॉय करेंगे. अब एक विद ब्रह्मा कुमारी में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपके लिए है. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थी नीचे थी आंखें पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
1: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
0: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
1: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी 1674 AM लाफ्टर थेरेपी दी हो चुकी है जी शुरुआत। समा हो चुका हसन दा।

0: वाह वेरी गुड,
1: बड़ी नमीजी बोली है,
0: क्या बात है, महात्मा गांधी ने भी पाई होनी है।
1: आलू आलू आलू नी बापू गांधी ने कीता चरखा चालू नी बापू गांधी अभी पौनी नहीं आई बीबी
0: बल्ले क्या बात
1: बोलियां दी खूबसूरती है ना, जेडी मर्जी बना लो।
0: एक गल सही है ना,
1: थैंक यू ना,
2: थैंक यू मेरे दीदी नाल गल कर।
0: ओ गॉड,
2: हेलो
1: हेलो,
2: सत श्री अकाल जी ते अंकल जी।
1: सत श्री अकाल, हुण अंकल तुसी हो।
0: जे
1: वीरा कहन दे बावजूद भी मेरे को गलती होगी तो फिर अंकल कह लेना।
0: मैं
1: मतलब वेखना चाह रहा भी एदां भला ठीक हुंदा है ना। पिछे हिका लाने आलिया कि बीबिया चाहिए, उन्होंने उम्र कि होनी चाहिए, डिटेल बना के लियानी लिस्ट।
0: मैं कालिया एनका पा के ना बैक साइड ते ऐसा गिटार लेके अपनी खड़ा हो जाऊंगा, पावे बोली ते जचे ना जचे, पर उदा फोटो च लगना चाहिए ना कि तकड़ा कॉन्सर्ट टाइप लेवल हुंदा।
1: हाँ
0: है ना, डन हो गया।
2: ढोलकी पापा बजा लेंगे,
1: बस ठीक है,
0: बस गाली खत्म हो गई, ढोलकी गिटार
1: और
0: ते बस हो गई बोली तैयार।
1: हाँ
2: गुड, हां जी
1: ओके हो गया काम ते फिर।
2: हां जी
1: की सुनाओगे?
2: अज मैं 15 अगस्त ते कुछ सुनावांगी।
1: हां जी
2: सिंध वासी ओ रखना याद सानू, किते दिला तो ना भुला जाना, खातर वतन दी लगे हां चढ़न फांसी, सानू देख के नहीं घबरा जाना, साडी मौत ने वतन दी वासियां दे दिल्ली वतन दा इश्क जगा जाना, देश वासी ओ चमकना चंद वांगू, किते बदला हेठ ना आ जाना, करके देश दे नाल त्रो यारो दा कौम दे मत्थे ना ला जाना, मुला सिंह किरपाल नवाब वांगू अमर सिंह ना किसे कहा जाना, जेला होण कॉलेज वतन सेवकां दे दाखल होए डिग्रियां पा जाना, हुंदे फेल बहुत अते पास थोड़े वतन वासियो दिल ना ढा जाना, प्यारे वीर नो चले हां असी जिथे इसे रस्ते ओ तुसी भी आ जाना, इसे रस्ते ओ तुसी भी आ जाना।
0: वाह वेरी गुड, वेरी नाइस,
2: थैंक यू,
1: वेरी नाइस, बहुत सुना, याद कर लिया।
2: थैंक यू
1: हैव अ नाइस डे। कल आओगे तुसी ओथे फिर फेडरेशन स्क्वायर ते?
0: हां फ्लैग होस्टिंग ते।
2: हाँ जी आ जाएंगे।
0: हाँ, मुखर्जी भी आ रही है।
1: ओके
0: गुड है, गुड
2: साढ़े
0: दस शुरू मेरे
1: सवेरे शुरू हो जाना।
0: मतलब प्रोग्राम तो 10 बजे तो शुरू हो जाता पर होस्टिंग वही है 10:30।
1: चलो थैंक यू
2: वीर जी, तुम मिलना
1: आवे ठीक है भैना। थैंक यू न्याण की पिकअप किडी वेख कि पिकअप मार दे उस वे। नैक्सट साढ़े नाल ने ताज एंड सिबलिंग। सत श्रीकाल एम्बर, तुसी आने रहो एम्बर गुरबाज।
3: सत श्रीकाल
1: Egg juice.
0: Similar breakfast, very good.
3: Sometime egg and bacon.
1: sometime again. Sometime. Okay. Good. Good. Good.
3: That's alright.
1: Good. Good. Good.
0: Nice.
1: ते की सुनाओगे फिर आज?
4: Sometimes pancakes
0: also. Aye. Oi. Oi. Oi. Oi. I love pancakes.
1: Pancakes.
0: ऊपर सिरप आ जावे ना मेपल वाला. Oi. Oi. Oi. Oi. कैंट कम हो जाता
4: है सही Saturday.
1: हाँ जी.
0: Saturday.
4: Pancake.
1: ਸੁਣਾਓਗੇ ਅੱਜ?
4: ਬੋਲੀ
1: ਹਾਂਜੀ

0: बिंग
1: विश वेरी गुड भाई
2: जी जा बच के प्लेटफॉर्म तो नेक्स्ट बार ही के दिया
3: अब
2: गेस करना
3: डैडा
2: ना ओके आगे डैडा आ गया ओके ओके लियाओ लियाओ लियाओ डैडा आ गए फिर आ लाके हेलो सत श्री अकाल भाजी
3: अंकल जी दी आंटी जी
2: ओ सत श्री अकाल
0: डैडा की हो गया
2: ओ भाजी
0: स्त्रीलिंग पुलिंग खराब करी आंडे जे भाजी
3: कुछ नहीं लिखा लग गया सी
2: ओ भाजी
4: की गल होगी भाई
2: की खाए हो सिडनी तो ट्रक साइड ते ते सौ लिया करो
3: सोई दाई लोड आ जांदा
0: गुड है वेरी गुड
2: भाई नाल एक बंदा रख लो राज चला लिया करूगा ते तुही सौ लिया करो
0: हाँ अभी ठीक है स्यानी, स्यानी
3: ठीक है
2: ठीक है
0: चलो गुड
2: ख्याल रखियो
3: हाँ जी
2: ठीक है और फिर की सुनाओगे आज
3: एक बोली
2: ओके
3: सस वेलदे पांच सात मुंडे सस वेलदे पांच सात मुंडे लंबी लेल जा बनावागे कोई आवागे कर जा
2: आवेगा कर
3: एक आवेगा कर एक जावेगा फिर गदे मोटर
2: पा पा पा
3: गदे मोटर
2: पी पी पी
3: गदे मोटर
2: पी पी पी पा पा पा
0: पा पा पा
3: बले बले शावा शावा
2: ओ थैंक यू भाई आज तो तुम वाटी काट छड़े भाई
0: वेरी गुड वेरी नाइस
2: थैंक यू भाई हवा भर के थैंक यू
3: ना एक्चुअली नहीं है के
0: ओए यार ट्रिक हो गया सी
3: नाइस
2: जी गॉड पापा की आवाज किद्दा कर दे हो तुम फिर
3: लाइक इन द
2: पापा नु दस दो मम्मा ने चपेट बाटे रखी रखड़ी ते आए हो वही आए
0: होते फिर
2: चल जाना ओके किन्ने दिन रहोगे
3: दो
2: दिन
0: दो दिन घट ने
2: ताड़ी कोई सेवा पानी की थी कि नहीं इन्होंने
0: नहीं चलो
2: एक वो जड़ा हाँ जी मामा जी और वीर जी तो बच के रहो वीर जी ना बड़ा इंटेलिजेंट जे बंदा
0: ओके नाले मामा जी उन्होंने कितने ट्रैफिक के अपडेट ना दस दे फिर देखियो फिर हाल क्यों दा
3: एक्सीडेंट हो गया
2: मामा जी तानू कितना पता अच्छा तानू दस्या होना सरदार जी ने
3: हां जी
2: हो हो हो
0: ओके ओके ओके
2: की सुनाओगे फिर आज
3: एक बोली
2: हां जी
3: मासी नेदा वेवे खादे मासी नेदा वेवे खादे पुआने खादे दोदे पुआने खादे दोदे की नचा खाल खाल
2: खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़
3: खड़ खड़ खड़ खड़ निकी नचा खाल खाल
2: कड़े कड़े का
3: निकी नचा खाल खाल
2: खड़ खड़ कड़े कड़े खड़ खड़
0: जिंदाबाद रहेगा मामा जी जिंदाबाद है जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे
2: मामा जी जिंदाबाद ट्रक जिंदाबाद
0: ट्रक जिंदाबाद सिडनी जिंदाबाद
3: ट्रक उड़ लिया प्या
2: अच्छा उड़ गया वाह जो तुम ना सुकने पाते हो ना धो के उदो चिटकनी ला दिया करो उत्ते फिर नहीं उडूगा ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਗ ਚੁੰਡੀ ਲਾਇਓ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਡਣ ਪੈਂਦਾ ਵਾ।
0: ਸਿਬਲਿੰਗ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ
2: ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਟ੍ਰਿਕਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਨਾਇਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ।
0: ਓ ਵਧਾਈ।
2: ਯਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਹੈ।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: मोटी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
3: जी, 1674
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
4: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे
4: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
4: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे
4: आहो जी आहो

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18। हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आई एम ई एडवाइजर।